अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजेपी के आरजे प्रदीप, और इस प्यारी सुबह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक नया सवेरा, नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम एक नए आयाम के साथ, नए काम के साथ करनी चाहिए। और आज भी बहुत सारी बातें होंगी काम से जुड़ी हुई, जी हाँ, करियर से जुड़ी हुई। सुनते रहे रेडियो केदार, बात हिमालय की।

0: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं। जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं, उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेंड करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन होते हैं रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WIA से जुड़े और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में, देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कंपोनेंट में दो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहा है संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीज देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता, तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी थे, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशन होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके 6th क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 to 12, तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है, और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रेरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू. ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है, और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क. सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से.
1: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: सर, एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्कपैट्रिक मॉडल. सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स. सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूज़फुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूज़फुल लगी है ट्रेनिंग या नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया या नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है.
1: ये जानना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में.
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन. उनको ये यूज़फुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूज़फुल लगी हैं कि नहीं. उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स. उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया. उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोगों हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता
1: है. मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था. जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे.
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था, एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है. उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है. तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही. तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए. सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको. हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें. अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
2: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
2: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. कफनौल में, हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का. स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है. बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोले नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे, हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए. तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड, कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
2: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है. तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा, या तो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए, या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं. तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है. तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम क्या, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: जो ये मटेरियल है क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो हम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
2: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
1: तो ये जो क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं, तो ये आप ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
2: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं, जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
1: ये बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
2: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गए, हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
2: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है
1: जी।
2: जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
1: तो ये ट्रेनिंग देते हैं या?
2: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी जो रोज गंगा के किनारे जाता है, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
2: जी सर बिल्कुल आ रहा है, हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है, इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं, और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WIM से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
2: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमारे डब्ल्यू एम एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है। तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है और सिमरन जी मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूंगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज।
2: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए। तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: नमस्कार, आप 91.2 FM पर सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं आरजे कनक, मेरी उम्र है 13 साल और मैं मानव भारती इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 8 की स्टूडेंट हूं। आज हम रेडियो केदार के स्टूडियो में साइकोलॉजी टीचर प्राची नौटियाल मैम से उनकी टीचिंग जर्नी पर बात करने जा रहे हैं।
1: And I am Agastya Devlal of class 12th PCM studying in Manav Bharati Indian International School. I am 18 years old and today we'll talk about something which will fascinate the audience and also we'll talk about something which will motivate the students of our school and also the audience who are listening to this.
2: This is Tanuja Tiwari of class 12 Commerce from Manav Bharati International School. I am 18 years old.
3: This is Insha, class 12th Commerce of Manav Bharati School, and I am 17 years old.
0: Ma'am, can you please introduce yourself?
4: Hello everyone, my name is Prachi Nautiyal. I am a counseling psychologist and a PGD psychology at Manav Bharati India International School, Dehradun.
1: So ma'am, could you please take us back to the beginning and tell us what first drew you towards psychology?
4: So I took up psychology in class 11th, where it was offered as an optional subject in my school. I merely took it up because it sounded important and it was interesting, something different, something that I had not done before. Also, a very immature reason was that I thought it will give me an advantage over other people, kyunki main body language padh paungi logo ki and main unka behavior predict kar paungi. To mujhe laga ki it will be an important skill that I will be able to learn, so I took it up initially.
2: So what was your journey from being a psychology student to becoming a counselor and a teacher?
4: The learning journey was long and gradual, and it is still not over. So after completing 2 years of optional subject of psychology, I decided that I would pursue it because I liked it as a subject. I decided to pursue it as a career. For my bachelor's degree, I went to Graphic Arts University. There I was a silver medalist. I stood second in my batch, and I was offered a scholarship by the University Grant Commission, UGC. Then because I had a scholarship, I decided to move out for my master's. So I went to Punjab University in Chandigarh. There, although most of my, like half of my degree was during COVID, so I had to stay back home, but the time I had there was wonderful. I learned a lot of things regarding research and clinical experience. Post that, I came back and I also pursued a diploma in counseling psychology. Then I decided to work in marketing, that I did for around 6 months, I think, and then I decided to do something different. So I decided to teach because I am very fascinated by the subject, I am very interested in it, and I want to scatter that knowledge everywhere. So that is how I came to join your wonderful school and teach you lovely students.
3: Many students think psychology is simply about reading minds. What would you say to someone who has that misconception?
4: Okay, so when I initially came to the school, most of the students, because main arrangements mein jaati thi dusri classes mein, especially class 9th and 10th, so a lot of students asked me ki ma'am, kya aap hamara mind padh sakte ho, kya aap hamara mind padh sakte ho. So it was very fascinating because when I was in school, I also used to think that, but no, psychology is not actually about reading mind. Psychology studies behavior in a very systematic way. So we do research, we describe behavior, we explain it, and eventually, jab humme thoda experience ho jata hai us field mein, we start predicting behavior. So people who have had like around 10-15 years of experience in this field, they know that they will be able to predict द बिहेवियर कि वो आगे इंसान क्या करने वाला है, स्पेशली बच्चे. तो जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि आप किसी इंसान को जानते हैं जो लाइफ में बहुत सेफ डिसीजंस लेता है, जैसे कि पेरेंट्स ने बोला कि हाँ इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग में अच्छी जॉब है, तो दे विल परस्यू इंजीनियरिंग, दे विल टेक साइंस, एंड बहुत सेफली वो खेलते हैं. तो अगर आप उनको एक पोकर के गेम में चैलेंज करोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली, इफ यू आर अ साइकोलॉजी ग्रेजुएट एंड यू हैव स्टडीड साइकोलॉजी फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, यू वुड नो दैट दे विल प्ले अ वेरी सेफ गेम. तो तुम उनका गेम प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो इसीलिए उसको बोलते हैं रीडिंग माइंड वाला, क्योंकि आप इवेंचुअली यू गेट गुड एट प्रिडिक्टिंग पीपल्स बिहेवियर. बट नो, इट इज अ साइंस, इट वर्क्स ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक बेसिस, एंड हम रिसर्च के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर को.
0: फॉर अ स्टूडेंट हु हैज जस्ट कंप्लीटेड क्लास 12, व्हाट इज द यूजुअल एकेडमिक पाथवे टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया?
4: ओके, सो इफ यू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी फर्दर, आई थिंक अ मास्टर्स डिग्री इज अ मस्ट इन द फील्ड. क्योंकि अगर आप बैचलर्स करते हैं, सिर्फ बैचलर्स के बाद देर आर नेक्स्ट टू नन अपॉर्चुनिटीज, बहुत वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज आते हैं. masters, eventually when you do, a lot of pathways open up for you. Post that also you have to study. तो मास्टर्स के बाद आप अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं अगर आपके पास काउंसलिंग साइकोलॉजी में एक स्पेशलाइजेशन है ड्यूरिंग योर मास्टर्स. सो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. बट आई थिंक इट इज बेटर टू परस्यू फर्दर एजुकेशन. तो दो पाथवेज निकल आते हैं इसके बाद. या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं किसी भी एक गाइडेंस या गाइडेंस और काउंसलिंग में, या फिर आप दो रास्ते हैं, या तो एमफिल करिए या तो पीएचडी करिए. पीएचडी के लिए आपको नेट एग्जाम देना होगा, जिसके बारे में मैं अभी बाद में बात करूंगी जब एक क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर. बट एमफिल के थ्रू आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपका टेस्ट लेता है, असेसमेंट करता है, और कोई अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने में एंड उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजली एक हॉस्पिटल सेटिंग में मिलते हैं हमें, एंड वो डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ. पीएचडी अगर आप रूट लेते हैं तो आप बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन अप हो जाती है. काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल साइकोलॉजी, इवन रिसर्च विच इज अ बिग पार्ट ऑफ साइकोलॉजी नाउ ओपन अप फॉर यू. तो आप नेट के थ्रू वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं नेट एग्जाम, एंड देन यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो. यू कैन एंटर द फील्ड ऑफ एकेडेमिया एज वेल.
1: So ma'am, as you know that there are so much of students who are very much interested in psychology and who are very good at reading minds, predicting people's behavior. So ma'am, like what all the other students can do after their bachelor's degree, like what other different career options they can go at higher studies in psychology?
4: Okay, so for higher education, initially when I took up psychology, so माई पेरेंट्स वर वेरी हेजिटेंट, बिकॉज जो भी हमारे घर में रिलेटिव आते थे, या तो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना होता था, अगर सुना भी होता था तो उन्हें लगता था कि ये पढ़ाया नहीं जाता है. तो जब मैंने साइकोलॉजी लिया तो सबने मुझे बोला, डिस्करेज किया काफ़ी हद तक कि मत करो, करियर ऑप्शंस नहीं है, जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. बट आई वॉज वेरी एडमेंट बिकॉज आई एंजॉयड द सब्जेक्ट सो मच. मैंने कब पढ़ूंगी तो मैं यही. सो आई डिसाइडेड टू डू दैट. एंड आई वुड से क्योंकि मैंने 8 साल पहले शुरू किया था पढ़ना इस सब्जेक्ट को, तो तब उतनी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. बट क्योंकि अब विद ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ जेंजीज के बीच में, इवन मिलेनियल्स एंड जेन अल्फा जो आ रही है हमारी, दे आर मच मोर अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. तो अब मुझे लगता है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे वर्किंग वर्ल्ड के, उसमें साइकोलॉजी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाता है. तो अगर मैं कुछ ब्रांचेस की बात करूँ हायर एजुकेशन में, तो मास्टर्स के बाद आपकी ट्रेडिशनल कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे क्लिनिकल काउंसलिंग, जिसमें आप क्लाइंट को लेते हैं और क्लाइंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस में अब ये ज्यादा पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ. इस बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है कि काम ही सब कुछ नहीं है, तुम्हें मेंटल हेल्थ पे भी अपनी ध्यान देना है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देना है. तो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. तो एचआर जो डिपार्टमेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन अब वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं. और एक इम्पैक्ट इसका भी देखने को मिला है कि सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है कि सारे सीबीएसई स्कूल्स में एक काउंसलर बैठेगा. तो वो एक आपकी फील्ड खुल जाती है, एजुकेशन के टर्म्स में फील्ड खुल जाती है, क्योंकि एजुकेशन में भी साइकोलॉजी का बहुत सारा काम है. जैसे कि अब छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आप उनको करवा सकते हैं. उसके अलावा रिसर्च है आपके लिए, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक फील्ड है जिसमें आप ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, स्पेशली जैसे मेमोरी है, लर्निंग है, इन सारे एक्टिविटीज को लेके, इन सारे फील्ड्स को लेके आप उस पर बात कर सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं.
2: व्हाट आर सम रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन दैट स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर फॉर साइकोलॉजी, एंड व्हाट शुड दे कंसिडर अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग्स?
4: फॉर यूनिवर्सिटीज आई वुड से दैट always prefer a university that is in a tier 1 city, be it a government university, be it a private university, it should be in a tier 1 city, jaise ki Delhi, Mumbai, jo ye aapke metropolitan cities hain. I'll tell you why I say this, because in cities mein exposure bahut zyada hai bachcho ke liye. Aapko एक नहीं 50 अपॉर्चुनिटीज हैं टू डू इंटर्नशिप, टू डू वॉलंटियर वर्क. एंड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काम इसी के थ्रू सीखते हो. आप जितना मर्जी पढ़ लो, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, यू विल नॉट बी एबल टू डू गुड इन द सब्जेक्ट. सो आई वुड प्रेफर, आई वुड से, आई वुड एडवाइस कि आप टीयर 1 सिटीज को प्रेफर करें, जो आपकी, अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बात करूं तो DU आपके, BHU, PU जहां की मैं एलम हूं, PU से मैंने करा था, PU बहुत बढ़िया है, जामिया हो गई आपके लिए, दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज. रिसेंटली TISS मुंबई करके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन मुंबई, विच इज़ वेरी रेप्यूटेड, इट हैज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम. बट आई थिंक इट इज़ फॉर मास्टर्स एंड उनके मास्टर्स की एक खास बात ये होती है कि वो उस पर 6 महीने का फील्ड वर्क होता है जहाँ पे आप जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग जगहों पे और 6 महीने के लिए वहाँ पे काम करते हैं साइकोलॉजी की सेटिंग में. तो आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग अबाउट देयर प्रोग्राम. सो टिस इज अ गुड प्लेस टू बी राइट नाउ. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के टूवर्ड्स ही ड्रॉ हो. बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो टियर वन सिटीज़ में लोकेटेड है और जो बहुत अच्छा कर रही है इस फील्ड में. फॉर एग्जांपल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में विच हैज़ अ वंडरफुल एंड उनके एलुमनाइज़ अब बहुत सारी जगह स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में प्रोफेसरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं मेरे नोन में. तो उनका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है. देन यू हैव एमिटी, मणिपाल, सेंट जेवियर्स है मुंबई में. सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग. बट आई वुड से दैट कई बार ऐसा होता है हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन नहीं मिलता है क्योंकि हम मे बी हार्ड वर्क ना डालें उतना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट आई वुड सजेस्ट कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां भी जाएं यू शुड पुट इन एफर्ट. अगर आप एफर्ट पुट इन करोगे, आप खुद से उस सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, खुद से इंटर्नशिप्स ढूंढने की कोशिश करोगे, अलग अलग सेटिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, यू विल डू वेल. आप अच्छा ही करोगे. बट ये वही है कि एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट.
3: What examinations or qualifications should they know about it they eventually want to practice as a professional psychologist in India?
4: तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी के लिए जो रेगुलेटिंग बॉडी है इंडिया में उसका नाम है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI. RCI से लाइसेंस होना आपको ज़रूरी होता है अगर आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना है. बट आई विल टेल यू इफ़ यू आर इन क्लास 12th राइट नाउ वट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET UG एग्जाम जिसके थ्रू आपको बैचलर्स प्रोग्राम BA और BSc में एडमिशन मिल सकता है क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस की तरह भी ट्रीट किया जाता है और एक आर्ट सब्जेक्ट भी है. तो आप या तो BA में एडमिशन ले सकते हैं या BSc में एडमिशन ले सकते हैं. उसके लिए आपको CUET UG एग्जाम देना है. पोस्ट विच जब आपका 3 साल, अब तो 4 साल की तरफ ये डिग्री बढ़ रही है क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है कि आप 4 साल बैचलर्स करें और सिर्फ 1 साल मास्टर्स करें. तो पोस्ट 3 or 4 years यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स. उसके लिए आपको CUET PG एग्जाम देना पड़ेगा जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है. उसके बाद जब आप मास्टर्स डिग्री आ जाए आपके पास, आपके 2 पाथवेज खुलते हैं. या तो आप क्लिनिकल की तरफ जा सकते हैं या तो आप अपना एकेडेमिया, काउंसलिंग और दूसरी फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं. अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है तो अभी तक क्या चलता आ रहा था कि MPhil प्रोग्राम एक होता है उसमें. तो MPhil के लिए हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर हॉस्पिटल अपना अलग पेपर करवाता है. वो यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग में किया जाता है. बट अब गवर्नमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी MClin-Sci करके एक प्रोग्राम निकाला है जिसके बाद अब 4 साल की बैचलर्स के बाद 2 साल का वो प्रोग्राम डायरेक्टली कर सकते हैं. आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहला सकते हैं. ये अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है. आई थिंक इफ यू आर लिसनिंग टू दिस राइट नाउ एंड यू आर इन क्लास 12th, यू हैव गुड 4 years, उसके बीच में डिसीजन हो जाएगा तो वो आपके लिए बाद की प्रॉब्लम है. यू शुड फोकस ऑन योर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम. आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ये हो गया. अदर देन दैट यू कैन गिव द UGC नेट एग्जामिनेशन. साल में 2 बार होता है नेट एग्जामिनेशन, एक जून साइकिल में और एक दिसंबर साइकिल में. अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसको तो आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD परस्यू करने के लिए एंड ऑल्सो टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज. तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. PhD अगर आप करते हैं तो आपके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं वेरियस अदर फील्ड्स में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च, इन ये वाले रास्ते आपके खुल जाते हैं. एंड आई थिंक हाँ, उसके बाद भी आप आगे पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स कर सकते हैं. बट दैट इज अप टू यू. बट हाँ, मेजरली अभी यही रूट्स हैं इसके, यही एग्जाम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है.
0: हाउ वाज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी चेंज्ड इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स?
4: जैसा कि मैंने अभी बोला कि जब मैंने साइकोलॉजी परस्यू करी थी तब बहुत ही 2 ट्रेडिशनल रूट्स थे. या तो आप टीचिंग में जाइए या आप जो भी थोड़ा बहुत काउंसलिंग वाला काम है वो कर सकते हैं. वो भी उतना पॉपुलर नहीं था. बट रिसेंटली आई हैव सीन दैट द ट्रेंड हैज़ ग्रोन. बहुत सारी फील्ड्स में साइकोलॉजी एक्सपैंड हो गई है, जैसे कि स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और हेल्थ केयर में स्पेशली, जहाँ पे अब कोई भी इशू होता है तो हर हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है. तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे स्पेशली कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर जो मदर्स है जिनको मिसकैरेज हुआ है या फिर और भी XYZ जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, उनके लिए अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट दे आर ऑल्सो सजेस्टेड टू गो फॉर साइकोथेरेपी, ताकि उनके ट्रीटमेंट में उनको आसानी हो उसको उससे डील करने के लिए. तो ये एक तरीका है. अदर देन दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पॉलिसी मेकिंग में जो हमारे हमारे बेनिफिट के लिए पॉलिसीज बनती है, पॉलिसी मेकिंग में भी साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा अब यूज होने लगा है. इसी से रिलेटेड IITs अब PhD ऑफर कर रही हैं साइकोलॉजी में इन पॉलिसी मेकिंग. तो वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इन IIT मद्रास देर इज अ प्रोग्राम अबाउट पॉलिसी मेकिंग, जहां पे आप जाइए पढ़िए एंड देन यू कैन वर्क एट द नीति आयोग और यू नो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज फॉर पीपल, क्योंकि उसमें ह्यूमन बिहेवियर का इतना एस्पेक्ट इन्वॉल्व है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिलेटेड, जिसमें आप अभी जो ओलंपिक टीम हमारी जाती है या फिर कोई कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम जाती है, तो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जाता था साथ में, अब एक साइकोलॉजिस्ट भी जाता है. एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग कि वो उनमें उनकी काउंसलिंग की तो इतनी जरूरत नहीं होती है, तो व्हाट दे ट्रेन देम टू डू इज अपनी हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को वाइल यू आर परस्यूइंग दैट स्पोर्ट उसको कैसे कंट्रोल करना है. अगर आप भाग रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है भागते हुए, तो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी. तो दे टीच देम कि ये सब चीजें अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस. सो दैट हैज कम अप टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. एंड अदर देन दैट आई थिंक क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो रहे हैं, तो एक फील्ड है ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड द UX/UI साइकोलॉजी, जिसमें डिजाइनिंग है. तो जब भी आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो वो एक UX/UI डिजाइनर डिजाइन करता है. तो अब स्पेशल कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं UX/UI फील्ड में, जिसमें आप यू स्टडी पीपल्स बिहेवियर, यू डू रिसर्च ऑन दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट रिसर्च यू मेक द वेबसाइट डिजाइन, यू सजेस्ट द वेबसाइट डिजाइन, ताकि लोग ज्यादा उस पर वेबसाइट पे क्लाउड ज्यादा बढ़े. तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड्स दैट आर कमिंग अप, एंड आई एम श्योर और भी आती रहेंगी, क्योंकि ह्यूमंस तो हर फील्ड में काम कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर हर फील्ड में रेलेवेंट है. तो साइकोलॉजी विल ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग रेलेवेंट धीरे धीरे इन एवरी अदर फील्ड. बाकी ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं काउंसलिंग क्लिनिकल के लिए आप जा सकते हैं, बट दीज आर सम अदर ऑप्शंस दैट हैव ऑल्सो ओपन्ड अप रिसेंटली.
1: सो मैम, जैसा आपने बोला कि आपको साइकोलॉजी में क्लास 11th 12th से इंटरेस्ट था, और आपको काफ़ी मतलब आपको बहुत लगता था कि अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज करूंगी तो काफ़ी आपको लगेगा कि हाउ विल यू प्रेडिक्ट द है ना सब बिहेवियर. तो मैम, क्या साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और एज योर करियर, क्या उसने आपको हेल्प किया है कि आप कैसे अपने सराउंडिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर या आपने साइकोलॉजी की हेल्प से अपने अंदर कुछ आपने ऐसा चेंज डेवलप किया है जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी?
4: एक्चुअली मुझे लगा कि जब मैंने 11th 12th में पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं अपने बारे में थोड़ा और अवेयर हो पाई, थोड़ा और जान पाई अपने आप को बेहतर. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे इसको परस्यू करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम वैसा फील नहीं करते जैसा हम उनके बारे में फील करना चाहते हैं. बुरा लगता है, अच्छा लगता है कुछ चीज़ों के बारे में. तो जब मैं स्कूल में उसको पढ़ती थी, तो कई एस्पेक्ट्स में मुझे लगता था कि हाँ यार, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है इस चीज़ के बारे में, एंड दैट इज़ व्हाट पुश्ड मी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. सो जब बैचलर्स मैंने करा, स्पेशली बैचलर्स वाज अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम का बढ़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम नहीं करना बट उनको एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, इट इज ओके टू बी थिंग्स आर रॉन्ग विद एवरीबडी. तो उसमें कुछ ऐसा वो नहीं बात है. तो दैट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. और मुझे लगता है कि जब वो चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे, अब मुझे लगता है कि मैं दूसरों के अंदर जब वो देखती हूँ, तो आई फील आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं आई कैन हेल्प देम ओवरकम इट. इसीलिए जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, तो इनिशियली मैं आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मुझे कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे नहीं होंगे, मैं उनको पढ़ा पाऊंगी कि नहीं पढ़ा पाऊंगी. बट जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा बच्चे इतने प्यारे हैं, चिल्ड्रन आर सो वंडरफुल, सो नाइस, बट दे ऑल्सो सफर फ्रॉम दोज वेरी इशूज विच आई सफर्ड फ्रॉम एन आई वॉज अ लिटिल गर्ल जब मैं स्कूल में थी. तो अब जब मैं वो नॉलेज पोजेस करती हूँ, जब मैं उस चीज़ में को पढ़ चुकी हूँ, आगे उस चीज़ को ओवरकम कर चुकी हूँ, एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मेरे को लगता है कि इन लोगों की लाइफ में भी मैं वो डिफरेंस ला सकती हूँ, थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प करके उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, एटलीस्ट जान के, उनसे बात करके, उनका दोस्त बन के, कि वो कैसा फील करते हैं और कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं उनके बारे में. और इसी वजह से उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड हमारे स्कूल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी.
2: मैम, व्हेन आई वाज कॉल्ड इन द स्कूल टू चूज माय सब्जेक्ट इन क्लास 11th, सो आई ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ साइकोलॉजी, मैथ्स एंड पेंटिंग, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फेमिलियर अबाउट साइकोलॉजी, और मेरे पे कोई ऐसा था भी नहीं जो मुझे समझा सके कि साइकोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है, किससे रिलेटेड है, उसमें क्या होता है, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. सो इफ़ यू कुड गिव ओनली वन पीस ऑफ एडवाइस और सजेशन टू द स्टूडेंट्स हु आर कंसिडरिंग साइकोलॉजी, व्हाट वुड इट बी?
4: ओके, तो इनिशियली मुझे लगता है कि स्कूल में हम जब भी आते हैं सब्जेक्ट टुवर्ड्स, इफ यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, इट्स मोस्टली बिकॉज क्योंकि हमें लगता है कि माई रीडिंग माइंड और वो कुछ अलग है सब्जेक्ट कभी हमने सुना नहीं होता साइकोलॉजी जैसा, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स हमने सब सुना होता है, बट साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हमने नहीं सुना होता है, तो इस वजह से हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हैं, विच इज ओके इफ यू कम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. बट इफ यू वॉन्ट टू परस्यू इट एज अ करियर, इफ यू वॉन्ट टू टेक इट अप इन क्लास 11th एंड 12th, आई थिंक इट विल गिव यू अ गुड बेस, अ गुड थियोरेटिकल नॉलेज. तुम्हें थोड़ा अपने बारे में जानने को मिलेगा, थोड़ा दुनिया के बारे में जानने को मिलेगा इस चीज के बारे में, तो अच्छा है पढ़ने के लिए. बट अगर आप इसको फर्दर परस्यू करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज अ सीरियस करियर. आपके पास लोग आएंगे अपने दिल का बोझ शेयर करने, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, और आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार वो लोगों के लिए जीने मरने की बात हो जाती है. तो इट इज़ अ हैवी प्रोफेशन, बट इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग. मैं बस ये बोलूंगी कि अगर आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, आप जेन्युइनली अच्छा फील करते हैं इसके बारे में, तो इतने हैवीनेस के बाद भी आप एक खुशी ढूंढ लेंगे उसमें. एक जब वो लोग ठीक होकर आपके पास आएंगे एक महीने बाद, वो बोलेंगे कि मैम मैं कितनी बुरी कंडीशन में था और आपने मुझे हेल्प करके कहाँ तक पहुँचा दिया, तो इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. इवन इन स्कूल, मैं तो अब स्कूल में आती हूँ और मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे, मतलब अब वो मेरे फ्रेंड्स जैसे ही हैं इस स्कूल में, तो उनसे जो इंटरेक्शन होती है, उनसे जो बातें होती है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत रिवॉर्डिंग लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करके, उनकी खुशी में जब वो सक्सेसफुल होते हैं, वो किसी चीज में अच्छा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो इन ऑल आई थिंक जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप एक बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ही ब्रॉड अपनी होराइजंस को ब्रॉड करने वाले इंडिविजुअल बन जाते हैं. एंड ये ना आप फिर किसी भी फील्ड में जाएं अपनी लाइफ में, अगर आपने एक बार लाइफ में साइकोलॉजी पढ़ी है, आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, आपका दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है, और फिर आप वो इंसान नहीं रहते जो आप थे. आप बदले नजरिए से दुनिया देखते हैं, एक बहुत पॉजिटिव वे से दुनिया देखते हैं. परेशानियां तो सबकी लाइफ में है, बट परेशानियां थोड़ी आसान लगने लगती हैं.
0: हमें मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा. मैम ने हमें अपनी टीचिंग जर्नी के बारे में बताया और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी 11th या 12th क्लास के बच्चे कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और मैम हम आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतने सारे बच्चों की इतनी हेल्प की. इस एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में ज़रूर डेवलप हुआ होगा. चलिए इस बातचीत को विराम देते हैं. सुनते रहिएगा 91.2 FM पर रेडियो केदार. अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ.
4: थैंक यू, एंड आई होप आपकी सारी साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया होगा मैंने.
1: थैंक यू.
5: रेडियो केदार 91.2 FM, बात हिमालय की.

0: आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं। जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं, उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन है रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WII से जुड़े? और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कॉम्पोनेंट में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज़ के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पर इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहा है संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में, वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता। तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी थे, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग्स करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशन होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी होती है। तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके सिक्स क्लास तक हो गया, देन हमारे सिक्स टू एट क्लास हो गया, देन हमारे नाइन से ट्वेल्व। तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में। देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है।
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रेरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वो वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में। हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू। ऐसे हम लोग जो एनसीसी एनएसएस कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो एनसीसी कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क। सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।
1: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: सर, एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्क पैट्रिक मॉडल। सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूज़फुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूज़फुल लगी है ट्रेनिंग या नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया या नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं। सो इस ये हमारे किर्क पैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है।
1: ये जानना चाहिए ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में।
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन, उनको ये यूज़फुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूज़फुल लगी हैं कि नहीं। उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स, उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया। उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है।
1: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे।
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है. उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है. तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही. तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए. सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको. हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें. अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
2: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
2: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कफनौल में. हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का. स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसे बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है. बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोले नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे, हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए. तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड, कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, बच्चों के बीच में? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
2: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है. तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा, या तो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए, या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं. तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है. तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो हम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
2: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
1: तो ये जो क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं, तो ये आप ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
2: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं, जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
1: ये बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
2: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गए, हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिव डॉल्फिन्स बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
2: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है
1: जी।
2: जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटैंगल्ड।

0: रात में वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है। इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं। और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
0: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं। हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे WIM एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है, तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। और सिमरन जी, मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
0: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, यह आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।
1: हाँ।